0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियता को अभ्यास।
1: रेडियो थाहा संचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
0: द न्यूज प्लस।

श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ॐ देया सदा सवृति मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिदा सरसन्निविष्ट केयूरवाल्मकर कुंडलवान किरीटी हरि हिरणमय वपुर धृत शंख चक्र हरि हिरणमय वपुर धृत शंख चक्र ब्रह्मा मुरारी स्थिपुरंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु।

0: गन्जमल सज मिरा आइरुले बानी एमएल एमए ओ छछामेला लिउ सोतर पोतर राले तार जगे रहतै
1: सलाई लाइटर सियाउला मे सचाउने चीज राले जबाङजा र यामा देने पोल गेने या इतो चीज र रहिदे गन्जमल याल के बाबा या
0: पिकनिक बनभोज बाक मे सचाउसु छिन्ने मेले चाउसु सयदे के खनाए गन्जमले ओछो छामि दै के बारी को चुरोद विधि ओरे बनै कोबाजेन के माखी
1: लांखर नाम ल लिजौ वन उपभोक्ता समूह राई सामुदायिक बने हो नि ढाल्ले छ अनुगमन दुने व्यवस्था चाउस गि दुए
0: गेछो छामेला खोरेल चाउसी पोलिए होलिदे तरिम गाय गेजो मेके लाइजु अब नजिरे बने गेम येल गेजो मेके मालाये औले मलायो के नाइये
1: बन्जंगल स जुडिसियो गेम बारी ल बालिनाली कुचिउला चिउली झ्याप्रा र सताउसु छिनि ने चाउस सैले के खेले या
0: बन्जंगल ने लागि के माइये मेओ लागि किनि पार जना खरनाम नार मिदि दे बने चानो ज मेके सये
1: बतास उचलिजु बेलाको हिजिमके कोटल मेके सताङ्गिने हेनोखेम छिन्ने ने चाउसके सया
0: ने लागि निताए गे मने गे बचिए सुनो अरुले मने गे बचया
1: के छ छामला पोयाल ने लागि के सन्किने गे छोटा ओडा कार्यालय प्रहरी कार्यालय सहज सुनछरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाए उमी कार्यालय ल खबर गिरिए
0: अनुरोध सुनछरी गाउँपालिका वन वातावरण सज विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा

0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास।
1: रेडियो थाहा संचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
0: जीवन गंगा।